0: फिर अनुतुनाई दशमा पहा अनुतुनाई दशमा हाथा लखांडे रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकीय हांडे
1: विलाव पसर तुनाई
2: विलाव ओपवित किन्ह आवे
3: वार्ता पिक वार्ता कबनी कोट याते एनएलबी धन अधिकार ने लुटराई इन प्रति संवर्धने तक तैमंत शक्तियक्विमिंग ओबाद दिन वार्ता दिन वटे धन अधिकार ने बिल्डिंग के ओबाद कोटी पचेकुवन